जो जन्मे सो जानो मुआ, जो जन्मिया है जो पैदा होया है वो एक ना एक दिन रुखसत होएगा ही होएगा। गोविंद भगत अस्थिर है थिया, एको एक परमात्मा है जेड़ा जूना विच नहीं, जेड़ा ना जन्मदा है ना मरदा है, जो अपने आप तो है, जेदा कोई मां बाप नहीं है। कबीर को ठाकुर ऐसो स्वामी जाके माई ना बापोरे, क्योंकि जे मां दे पेटों पैदा होवेगा तां मरना पेगा, जो जन्म है सो जानो मुआ। और परम पिता परमात्मा ही एक ऐसा है, ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, वो ना जन्मदा है ना मरदा है, क्योंकि जाके माई ना बापो रे। सुग्रीव नवा सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं, आओ अब की बार बख्श बंदे को बौर ना पाओ जल फेरा। शब्द गायन करके पांच मिनट विच आप जी पासों खिमा दी जाज खोवा गया।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुद बिन सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला चौथा, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जी उपरिया, शैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया, ऊडे ऊडा वैसै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइयै, तेरा अंत न पारा वरिया। रागासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुध जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतोह जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु। आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करता।

अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मुहि रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

आयु देव दैत जच्छन उपजायु आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो।

दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़

कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव, आप अपनी बुध है जेती, परनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेर जसे तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिकु बार असिक संगरु, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा।

और सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजियां, वाधाइयां राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, शब्दों ता गावो हरी केरा, मन जिनी वसाया कह।

0: पंजवां हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंगमान। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। और सत्कार जो सार सिंह जी ने बख्शिश की है आप संगत ने हमारे निकी कुछ बैठ के पितर गुवाणी सोदर रास्ता के पाठ सरू किए ने अरदास साधे पर हमारे बख्शे पितर नाम सरू किए हैं। सो साझा जस पाठ में गुरु साहब ने आप गुरु साथ ने बख्शिश किया है और सार सिंह संगत ने पता है कि हम चामल की आरंभ हो गए। जिस सब तो पहले कीर्तन करे भाई सुरजीत सिंह का जथा तो जिस प्रतपाल सिंह जी अज इन अगुवाई कर रहे हैं तो यह करे 7 बजे तक आरती की नाम सिंह द्वारा आठ संगत चैनल मारे जाना जोड़ने वास्ते महानपुरा करे 7 बजे कथा करे भाई गुरमेर सिंह जी ये 7 मार्च तो लैके ठीक 8:30 तक कीर्तन करे भाई हरप्रीत सिंह जथा। सो सारी संगत ने बेनती है कि 8:30 तक भाई निकी उदरंद मान सार सिंह जी अच्छे शाम सारे कथा की दरबार श्रम करके जीवन दड़िया सफला करो। सो सार सिंह जी आप संगत ने बेनती है कि हर रोज गुरु घर जरूर आया करो आओ मथा टेको अरदास करो जिन देर तक चाहो हमारे निकी और बैठ सार संघ जी कथा की दरबार सामने कर सकते हो। तो सार संघ जी आप संघ तक बेनती है कि आप देख रहे हो कि जो नॉर्थ आर साउथ आर डबल बिल्डिंग बन रही ने उन्होंने मेहनत खर्चा आ रहा। सो बहुत सारे परिवार ने जिन्होंने मारे बख्शिश की कमाइया सफल की ने मेहनत माया गुरु घर भेटा की है। सो बटभागी हैं सार संघ जी जिन्हें अज तक माया भेटा नहीं की जिन्होंने सारे बेनती है जरूर अपनी माया सफल कर दें कोई ना कोई हिस्सा पा के जीवन दड़िया सफला करो माया सफल करो। सार संघ जी आप संघ तक बेनती है कि जो लड़ीवार सहज पाठ आप सर कर रहे हो तो उस वास्ते सरबत्ते पहले वास्ते कर रहे हैं। सो इन सारे भोग एक दिन पैने ने सो वास्ते भाई रजिंद्र सिंह संपर्क करके जरूर अपना सारा प्रोग्राम उन्होंने साझा करो। उन्होंने टेलीफोन नंबर है 408-712-4145। बाकी सार संघ जी आप संघ तक बेनती है कि गुरु घर जो खालसा स्कूल है वह एडमिशन हम खुला है तुम ऑनलाइन उन्होंने संपर्क करके अपने बच्चों खासा जरूर दाखिला लैके दे सकते हो। सात संघ जी आप संघ बेनती है कि अगस्त 7 है प्रकाश श्री गुरु हरिकृष्ण सच्चे पातशाह जी का आप आओ धूमधाम मना के गुरु खुशियां प्राप्त करिए। सात संघ जी 7 तो लैके 9 तक 7, 8, 9 गुरु घर कीर्तन होया भाई रणजीत सिंह जी ढड्डियां वाले का। सो सात संघ जी आप जरूर हालिया पर 7 और 8 शाम कीर्तन होने कार 6 तो लैके 9 बजे तक 9 तरीक कीर्तन होगा 11 तो लैके 2 बजे तक। सात संघ जी आप संघ बेनती है कि जरूर आओ गुरु दी खुशियां प्राप्त करो आओ सात संघ जी भाई साहब त्यार बेनती करिए कि धर्म कार्य सामू करिए। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह।

गुरु सद कव नल कह जन गुरु न देखियो नहु कियो ते अक्यथ संसार मह कचो कंचन भयो

से पास प्रेत सोर नर भय चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के।

गुरु सवारी संग जी आप माई पाई दूरो नेड़ियो चल के रोजाना गुरु दरबार विच पहुंचदे हो। दूर दरेडे प्यारे गुरसिख अपने घरां विच भी अमृत बाणी का आनंद प्राप्त करते ने। गुरु चरणा च अरदास है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। अमृत बचना दी सांझ पौंदिया बेअंत भुलां दीआं माफियां सब माई पाई रल मिल के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जय कार कीर्ति आखिए करते का हो बिचारो तित कर गावो सोहेला सबरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सो।

सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदे चानन समय चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै स्वार्थी होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग कहोए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिख मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वंडा हे कर डंडौत पुन वंडा हे रहाव साकत हर रस साधना जानिया तिने अंतर हौ मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलह चुभै दुख पावह जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड।

0: अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ
1: कल क्लेश तन माहि मिटाओ
0: सिमरौ जास विषम परे कै
1: नाम जपत अनेक भगन तनिक।

0: प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै
1: सबकै सिमरन सबकै सजै
0: प्रभ कै सिमरन नाहि जम त्रासा
1: सबकै सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम हृदय माए समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना।

0: शरीर कटाए हम मैं कर राती,
1: मर्त नेम करे व पाती,
0: नहीं तुल राम नाम विचार,
1: नानक गुरमुख नाम जपिए कवार,
0: नाव खंड पृथ्वी फिरे।

0: निष्कहिए तू समझे पूरा।
1: कहां बिष्णु पद गावे गुंग,
0: जतन करे तौ पी सुर भंग,
1: पिंगल पर्वत पर पवन,
0: नहीं होत ऊहा उस गवन,
1: करतार करना में दीन बेनती करे,
0: नानक तुमरी कृपा तरे,
1: संग सहाई सो

0: चरण पर विकार को तावे,
1: मिथ्या मन पर लोभ लुआवे,
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,
1: मिथ्या वासले विकारा,
0: बिन बूझे मिथ्या सब पई,
1: सफल

0: आप गावाए सुहर गुण गाओ
1: कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल विगास
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
1: सर्वन दान प्रभु तेरी मया
0: आपू कछु न किन्हू लया।

0: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा,
1: मन अपना है सब ते नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नानक जिन प्रभ आप करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा,
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा,
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के ओए सो फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार,
0: ब्रह्म ज्ञानी के रंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन भाए,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए दाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

0: अष्टपति
1: जिसके अंतर राजमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो मन मंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आपस को कर्मंत कहावे
0: जन्म मरे बहुजोन प्रमावे
1: तन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्खंदा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बिसावे
0: नानक यहाँ मुक्ता गय सुख पावे
1: कर्मंता होए कर गरवावे
0: तिन समान का संग न जावे
1: बोला कर्मान कुपर करे आस
0: पाल पीतरता का हुए बिनास
1: सब ते जाने आप सब ते आप जाने बलवंत
0: इन में हुए जाए पुष्मंत।

0: अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै।
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटै।
0: संत कै दुखन सुख सब जाए।
1: संत कै दुखन नरक में पाए।
0: संत कै दुखन मत हुए मलीन।
1: संत कै दुखन सो बाते हीन।
0: संत के हाथी को रखै न कोए।
1: संत कै दुखन थान पृष्ट होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करै।
1: नानक संत संग निंदक भी तरै।
0: संत के दुखन ते मुख पवे।
1: संतन कै दुखन काग जो लवे।
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए।
1: संत कै दुखन त्रिग जोन करमाए।
0: संतन कै दुखन

0: संत का दुखी सदा अपवित्र,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब ते आगे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा विकारी,
0: संत का दुखी जन्म में मरे।

0: संत के दुखी को ध्यान परमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते तोता,
1: यो सास बिना मिटता की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किचनाही,
1: अपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को वर न रखन हार,
1: नानक संत भावे ता लए वार,
0: संत का दुखी यो बिल लाए,
1: यो जल भी हूण मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: यो पाप की इंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे किला,
1: संत
0: का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
0: किरत निंद का तुर ही पया,
1: नानक जो सुभावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी नाम रे ना जवाइये,
0: संत के दुखी की पुजे न आसा,
1: संत का दुखी उठ चले न आसा,
0: संत का दुख न त्रिष्टे कोई,
1: जैसा भावे तैसा कोई होए,
0: दया कीर्तन मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट किसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: रब की उस्तत करो दिन रात,
1: तिसे ते आवो सास ग्रास,
0: सब कछ वर्त तिसका

0: मानुख की तू प्रीत त्याग
1: तिससे प्रेरणाए विच कोय
0: सर्व निरंतर एक सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गहर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद।

0: कर पाया सोई होग।
1: अरण तरण जाका नेत्र भोर,
0: इसका मंत्र न जाने हो।
1: अंधरू मंगल सज जाके,
0: सर्व थोक सुनिए करता के।
1: राज में राज, जोग में जोगी,
0: तप में तपेश्वर, गृष्ट में भोगी।

0: गुरुदेव
1: यों रत्न जन्म का हुए उदार
0: हर हर सिमर प्राण आधार
1: अनिकु पावना छूटन हारे
0: समरत शास्त्र वेद बिचारे
1: हर की भगत करहु मन लाए
0: मान बन छद नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे तना
0: तो क्या लपटाव है मूर्ख मना
1: पुत मीत कुटंबर बनिका
0: ते कहो कवन तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
0: ते कहो कवन छुटकार
1: आसु हस्ती रथ असवारी
0: झूठा डंफ झूठ पासारी
1: जिन दिए तिस बुझे न बेगाना
0: नाम बिसार नानक पछताना
1: गुर की मत तू लेह आने
0: भगत बिना बहुत डूबे स्याने
1: हर की भगत करहु मन मी

0: तब हर किशोक कहो किसे व्यापत
1: जब अपन आप आप पार ब्रह्म
0: तब मोह कहा किस हो बत भरम
1: अपन खेला वरतीजा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: तब बंद मुक्त कहो किस को गनी
1: जब एक अरगम अपार
0: तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
0: तब सैव सकत कहो कित ठाए
1: जब आप है आप अपनी जोत तरह
0: तब कवन डर कवन कत डर
1: करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अविनाशी सुख अपने आसन
0: जन्म मरण कहो कहा विनाशन
1: जब पूरन करता प्रभ सोए
0: तब जाऊं की त्रास कहो किस होए
1: जब अभिगत गोचर प्रभ का
0: तब चतर गुप्त कह पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गाते
0: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप आपी चर्जा
0: नानक अपन रूप आप ही उपर जा
1: यह निर्मल पुरख पुरख पत होता।

0: आनंद
1: राम नाम तत करो विचार
0: लभ देखा करो उधार
1: अमृत भजन हर के गुण गाओ
0: प्राण करण का यह सुहाओ
1: आठ पहर प्रभ पे खो नेरा
0: मिटे ज्ञान बिन सह अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय बसा बहो
0: इच्छे नानक फल पावो
1: हालत पालत धोए

0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: करन करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभ ते सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे विस्तार
0: इस भावे ता एकंकार
1: अनिकला लखी न जाए
0: इस भावे तिस लय मिलाए
1: कौन निकट कौन कहिए दूर
0: आपे आपा भरपूर
1: अंतरगत जिस आप जिनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए।

0: संत जना की धूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: सात संग अगन सागर तरहु
1: हर तन के पर लेहो पंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: प्रेम कुशल सहज आनंद
0: सात संग भज परमान

0: कर पाहन अनमानत
1: मां मूड कज भेद न जानत
0: देव को कहत सदा शिव
1: निरंकार का जीनत न भेव
0: अपनी बुद्ध है जीती
1: बनत भिन्न भिन्न तव स्थिति
0: मेरा लखाना जाए पसारा
1: केवल सजा प्रथम संसारा
0: के रूप अनूप स्वरूप
1: रंग भयो राव कै भूपा
0: जेद स्थित जगिनी
1: उद्वज खान बहुत रज दीनी
0: फूल राजा है बैठा
1: पाऊ सेवन भयो शंकर कैठा
0: सिट दिखाए अचंब
1: आज वास रूप से अंभव
0: रक्षा मेरी तुम करो
1: सिख वार सिख संग्रो
0: जिते उठ पत्ता
1: सकल मलेज करो रण करता
0: तब सरनी परे
1: तिनके दुष्ट दुष्ट मरे
0: जवन पग परे तिहारे
1: तिनके तुम शंकर सब चारे
0: कल को एक बार ते आए हैं
1: ताके काल नट न है
0: शा होए ताई सब काला
1: दुष्ट रट कर तत्काला
0: दुष्ट तन जाहे न हर हो
1: ताके ताप तन कम है हार हो
0: सिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई
1: दुष्ट जाहत न सका न कोई
0: एक बार

खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम।

0: हे मेरे साहिब जी तुहाडे नाम तो सदके थोड़े थोड़े समय विच कुरबान कुरबान बलहार जाइए। गुरु सवारी संगत जी अमृत वेले सतगुरु महाराज ने रहाओ
1: रहाओ।
0: सतगुरु महाराज ने मुख वाक साहब जी की बख्शिश की है तो साने बहुत प्यार विच हाजरियां भरिया ने अमृत बचना की सांझ पाउंदियां बेअंत भुल्ला हुंदियां ने। गुरु साहब जी बख्शन योग ने, गुरु कियां संगतां बख्शन योग ने। गुरु सवारी संगत जी चार वीकां दा समां गुरु दरबार विच सेवा करन दा सतगुरु महाराज ने सुभाग अवसर बख्शिया है। एक कथा दोपहर दी हाजरी दास दी होर है, मेरे ख्याल 12:30 दा दास दा टाइम है। बाकी सैकटरी साहब अनाउंस कर देंगे। सतगुरु जी कृपा करन इन्ने समय दौरान चार वीकां जाने जा अणजाने अपने आप बंदा ठीक चलता है पर गलतियां अनेकां हुंदियां ने। मेरे सतगुरु जी अते गुरु कियां संगतां मेरियां भुल्लां मेरे गुनाह मैनूं बख्श दिओ। गुरु दे बचन गुरु दी अमृत बाणी आप जी दे हिरदे विच दास दे हिरदे विच वस जावे। लोक सुखीए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ अपत है मेले। अंतले बचन सत्कार जो ज्ञानी जी पढ़ो ता फतेह बलाई।

परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी नमा जी गुरु रूप साध संग जी, सब तो पहला महाराज के चरणा कमल च हाजरियां लवाउंदे मन बिरती की एकाग्रता वास्ते गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार नाल सत्कार नाल आप जी सरवण कर रहे सी भलो भलो रे कीर्तनिया, बहुत ही सत्कार योग गुरु प्यारिया पासों हजूरी रागी साहबान जिन्होंने बड़े प्यार रस पिना अमृतमई कीर्तन नाल आपां जोड़िया गुरबाणी नाल जोड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ कुछ समा आप जी के चरणा कमलों में थोड़ा समा आपां ने रल मिल के पाई गुरु कीआं वडियाईआं करनियां ने। सो पिछले साल भी उदों पिछले साल भी आप जी चरणां च हाजिर होए सी हेमकुंड साहब तो जो कि रस्ते दे विच स्थान ने जिथे आप जी नूं याद होगा कुछ 6-7 साल पहला आप जी चरणां च हाजिर होकर बेनती की सी, उत्थे जल की बड़ी घाट सी, बड़ा सहयोग आप जी ने बख्शिया प्रबंधक कमेटी वालों सकत्र साहब जी वालों गरेवाल साहब वालों बेअंत सेवावां भेजियां गईयां जो कि उत्थे हुण जल दे खुले गफे मिल गए ने। 7 किलोमीटर तो पाइपलाइन पै के आ गई है जीते कोई 60 लाख इंडिया का लग्या, उहदे विच आप जी का वड्डा योगदान है, बहुत धन्यवाद। ते हुण नवीआं बिल्डिंगां बणीआं नवें दरबार साहब बन रहे ने उहदी बात अरदास आप जी नूं बेनती करूंगा बाद दे विच। आओ सब तो पहला थोड़ा समा मन बिरती कागर करके महाराज दे शब्द दे नाल जुड़ना, पहला दास बोलूगा फिर आप जी ने एकाग्रता करनी है, कोशिश करनी है श्वास दे नाल बाणी नूं जोड़ना। जदों वाहिगुरु कहना उदों अपना जिहड़ा श्वास जदों अंदर नूं जांदा है नाभी थाईं आपां नूं पता लगे वाइब्रेशन होवे, गुरु जदों कहना उदों बाहर नूं जदों श्वास जांदा। थोड़ा समा कोशिश करो और इहनूं आपदे घर विच जाके रिपीट करना भाई जदों भी समा मिलदा, देखो किन्ना आनंद आउंदा। फिर किरपा करो सारे नाल

सागर तरया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे हर धन दोख किश पाप न फेड़े जम जंदार नयाव नेड़े तृष्णा अगण प्रभ आप

गुरु सवारी संगत जी बहुत ही प्यार आनंद विच साहबां दे दरबार विच जुड़ बैठे हो। जिन्हें तुसी प्यारे गुरसिख गुरु साहब जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़े हो, आओ बाजां वाले कलगीधर पातशाह जी दी बख्शी होई गुरु फतेह नाल सांझ पाउण दा निमाणा जिहा जतन करिए। संग नूं दूर करके प्यार सहित गज के आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग फतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज गुरु

सच्चे पातशाह जी सानू पता लग गया है, दो प्रश्न तुहाडे सन्मुख कीते ने, पहला केड़ा सी जी वंदना किनू करनी है, दूजा केड़ा सी गुण की दे गौने ने। ते महाराज ने कह दिता भी वाहिगुरु गुरु दे ही गुण गौने ने, ते गुरु नूं ही वंदना करनी है। तो तीजा प्रश्न कर दिता, गरीब निवास सच्चे पातशाह ऐसा जिहड़ा समर्थ गुरु है, तीजा क्वेश्चन आया जे ऐसा जिहड़ा समर्थ गुरु है उहदी प्राप्ति किवें हुंदी है, उहनूं मिलिया किवें जांदा है। तो महाराज तीजे प्रश्न का जवाब दिंदे ने, वड्डे भाग पढ़ो, वड्डे भाग भेटे गुरदेवा, वड्डे भाग भेटे गुरदेवा, भेटे तो भाग मिल जाना, वड्डिया भागा करके पूरा गुरु मिलता है। ऐसा गुर वड भागी पाया, भूले मार्ग जनह बताया, सिमर मना राम नाम चतारे, वस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। गुर पूरा भेटियो वड भागी, मनह पया पर घस, कोई न पहुंचन हर दूज, अपने साहिब का पर वस, अपने सतगुर के बल हर, आगे सुख पाछे सुख सहज, घर आनंद गुरु हिरदे रूपी घर विच आनंद बख्शिश कर दिंदा है। सतगुर पारस परसे है, कंचन करे मनूर मलीना, सतगुर बावन चंदनो, वास सुमास करे लाखीना, सतगुर पूरा पार जोत, सिमल सफल करे संग लीना, मान सरोवर सतगुरु कागो हंस, जलों दुद पीना, गुर तीरथ दरियाओ है, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया गुरमत मैल हर है, सतगुर पाया पूरा नावन, पशु परे तो देव करे, पशु वालिया बिरतियां तो गुरु देवते बना दंदा है। गुर दरियाओ सदा जन निर्मल, गुर तीर्थ दरियाओ है, पशु परेत करे पर बीना। इंदे वेखो गुरु की अमृत बाणी, तब भाई गुरुदास साहब जी दे बोल आप सच किवें मिलाप खांदे ने। तो महाराज कह लगे ने, ऐसा जेड़ा गुर है, बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ, वड्डे भाग भेट है गुरुदेवा, वड्डिया भागा वाले हो ता मेरे गुरु साहब जी की पावन हजूरी अंदर सजदी हो। गरीब निवाज सानू तीजे प्रश्न का पता लग गया, जिहड़ा पूरा गुरु है वड्डिया भागा करके मिलता है, संगत की प्राप्ति हुंदी है, वड्डे भाग भेटे गुरुदेवा। एक साडा प्रश्न होर जे हुण तुसी एक बार आखो, एकाग्रता बने, सतनाम श्री, जिन्हां ने नहीं आख्या वी आखो सतनाम श्री, रसना द्वारे गुरु शब्द क्या भला हो जाता है। गरीब निवाज करोड़ा ही अपराध होंदे ने, अपराध होंदे गुणा, चलदियां फिरदियां गुणा होंदे ने, हों अपराधी गुनहगार, मैं अपराधी हाँ गुनाहगार हाँ। गरीब निवाज दसो, जिहड़े अपराध किते होए ने, गुनाह किते होए ने, उन्हां दी चिंता बड़ी लगती है, नेत्र बंद करदे आ, बचपन तो लेके हुण दी उम्र जिन्नी हो चुकी है, वह सारे दा सारा शीशा फिल्म जिहड़ी है अंदरों शुरू हो जाती है। जरा नेत्र बंद करके देखो अंदर का शीशा, उस वेले चल पैना कित्थे कित्थे सुरत गई है, महाराज देखते हैं झात मारते हैं तो वह किवें खत्म होना, कोई सौखा ढंग दसो। तो महाराज ने उस प्रश्न का उत्तर दिता है।

0: जप हर रंगे साध संगत में की है नाम ते संगत में आके नाम जप के संसार तो तर जाईदा है। गौर प्रसाद परम पद पाया सूके कासट हरिया मेरे माधो जी बोलो सत संगत मिले सो सत संगत मिले सो जेड़ा संगत में आके मिल गया ओ तर गया तर गया। गुरु रामदास महाराज जी कृपा कर देने जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे जेड़ा पिछे जीव लंघिया वह भी त्रिग है ते जेड़ा जीव रहे ने वह भी त्रिग है ते जेड़ा संगत तो बिना अगे जीवन गए वह भी त्रिग है। जो जो एक बचन है जेड़े सारे नहीं है तुसी ता बैठे हो जो सतगुर शरण संगत नहीं त्रिग जीवे त्रिग जीवास पातशाह जी कहिंदे उन्हां दे जीन नू गां नू भी त्रिग है त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। संगत विच आके एक बार प्यार विच आखो सतनाम श्री संगत विच आके जी मेरे गुरु नाल प्रीति इयों बन जाती है जिवें पिता अर पुत्र है मां अर धी है तिवें गुरु नाल प्रीति बन जाती। जेड़े करतब नहीं होने वाले कारज वो संगत विच आके गुरु की कृपा वरतदी है। तुहानू एक मैं पौड़ी सुनावां जिथे एक बित सुनाए ने श्री मान भाई गुरदास साहब जी कहिंदे कारण कारण समर्थ है मेरा वाहिगुरु सारे करतबां दे करन वास्ते समर्थ है कोई शंका नहीं है कोई शंका नहीं है। गुरु जो चाहे सो हो सकता है करन कारण समर्थ है पर नाल कहिंदे ने साध संगत दा करे कराया अगर जेड़ा ना भी गुरु करना चाहे तो संगत में आके संगत की अरदास की जाए तो जेड़ा नहीं होने वाला गुरु कहिंदा लो जी बेड़ा पार हो गया। करन कारण समर्थ है साध संगत दा करे कराया दूजा बोल भरे भंडार दा तार है मेरे दाते दे भंडारे भरे होए ने कोई शक नहीं है भरे भंडार दा तार है कहिंदे साध संगत दा दे दिवाया जदों संगत विच विचोला बन जावे फिर वो जिहड़ा नहीं मिलना वो भी मिल जांदा जे पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया। तुसी नाल नाल पढ़ी जांदे हो मैनूं पता तुसी फोन तो कढ लैंदे हो नाल दी नाल चंगी गल है किधर कथा वाचक दी सिहारी बिहारी सज्जे खब्बे हो जाए तो उन्हें पता तो लग सकता भी इतों गलत मलत बोल गया। मैनूं याद आया मान सिंह चौर जी का वचन वो कहिंदा मैं एक बार कथा करा तो मैं जाण के कहिंदे गुरबाणी दियां जिहड़ियां पंक्तियां सी कुछ उन्हें टेप चों मैं सुनिया मैं गलत पढ़तियां किसी ने जवाब ना दिता दूजी बार फिर मैं गलत पढ़तियां किसी का जवाब ना आया जो तीजी बार गलत पढ़िया तो एक प्यारा से कह लगा ज्ञानी जी एदा है तो ज्ञानी जी हस के कह लगे मैं देखता सी भी कन्ना वाले बैठे के बोले ही बैठे ने आखो सतनाम श्री ये तुहाडे फोन तो मैं ये लग जाता भी हाँ कुछ ना कुछ मिल जाना सिहारी बिहारी सज्जे खब्बे होगी तो सारी साहब ने बोल पैना है पर यह भंडार का तार है साध संगत का दे दिवाया पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया जग भोग जोग ध्यान कर पूजा करे न दर्शन पाया। अगला बोल साध संगत प्यो पोत होए साध संगत प्यो पोत होए कहिंदे साध संगत विच आके प्यो ते पुत्र वाली गल बन जाती है गुरु नाल प्रीति बन जाती है। तुसी इस गल दे हामी भरोगे कोई भी बाप है पुत्र दा कदे माड़ा सोचेगा
1: ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ. ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਦਿੱਤਾ ਖਾਏ ਪਹਿਨੇ ਪਹਿਨ ਆਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਖਾਏ ਪਹਿਨੇ ਪਹਿਨ ਆਇਆ, ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋਏ ਵਰਤਿਆ, ਘਰ ਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਤਨਕ ਹੀ ਜਾਮਣ ਕੈ ਦੁਗਧ ਦੱਦ ਹੋਤ ਜੈਸੇ, ਤਨਕ ਹੀ ਕਾਂਜੀ ਪਰ ਦੁੱਧ ਫਾਟ ਜਾਤ ਹੈ, ਤਨਕ ਹੀ ਖਾਏ ਬਿਖ ਹੋਤ ਹੈ ਬਿਨਾਸ ਕਾਲ, ਤਨਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੈ ਅਮਰ ਹਵੇ ਗਾਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਗਣਕਾ ਬਿਹਾਤ ਜਿਉ, ਤਨਕ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਕਾਰ ਘਾਤ ਹੈ. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਨਿਰਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ. ਰੰਗੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ. ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਬਿਣੇ ਹੈ. ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਮਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ. ਮਹਾਰਾਜ, ਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ. ਜਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ. ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋ ਹੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸੋ. ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

एक गल का तो मैनू पता वो भला केड़ी आ, तो मेरी आवाज भी उची आ, मैं बोलता भी उची सुर में आ, यह थानू पता। तो दूजा यह भी पता भी मेरे अगे आ मैक लगा, यह दो गल का तुम पता। पर तुसी जन्ने बैठे हो तुहाडे नाल उची नहीं जे हो सकती, तुसी लखां विच हो, एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर। मैनू तो आवाज आई नहीं, लायो गज के हाजरी।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे।